0: me. Please help me.
1: रिकॉर्डिंग्स लाइन अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
2: जी सर, पता लगा रहा हूँ।